0: सगल भवन के नायका, सगल भवन के नायका, सगल भवन के एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन
1: दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी।
0: हाथ जोड़े तरले पाए, कुटिया विच बैठे कोड़े ने सिख ते प्रशादा सुट के चले गया, मगर एदे तरले ते एदिया बौड़िया ओ जड़ा विण बोलिया सब किछ जानदा है ना। एक भाई गुरदास जी ने बचन पढ़िया, आखो सतनाम श्री, कहिंदे जे रब नूं आवाज मारना हाथी ते कीड़ी, ध्यान दिओ हाथी ते कीड़ी, हुण हाथी बड़ा उच्ची कड़ाउंदा है ते कीड़ी बेचारी दी आवाज किन्नी है, ते भाई साहब नूं पुछिया जे हाथी आवाज मारे कीड़ी आवाज मारे ते रब दे घर किहदी पहलों पहुंचदी, ध्यान दिओ किहदी पहलों पहुंचदी, ते भाई गुरदास जी कहिंदे ने कीड़ी दी पहुंचदी, क्योंकि नमाणी होके आवाज मारदी, क्योंकि ओ नमाणी होके नताणी होके आवाज मार दी है। इन्हें भी नमाणे नताणे होके बेनती कीती, हे साहिबा सारे पिंड वालिया कोल चरण हैगे, हाथ हैगे, अखां हैगियां, मैं ते गरीब एक आदमी ते मेरे मन विच भी हुण चाह पैदा हो गया है, दर्श तेरे की प्यार

इन्हें जोतड़ी की मेरे मन में भी चाह पैदा होया है। छेवे पातशाह सतगुरु गुरु नानक पातशाह के छेवे स्वरूप जी मेरे मन में भी यह चाह मेरे मन में भी यह भुख लगी आ कि किते मैनू भी तेरे दीदार होण। फिर मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह सिखां दे नाल जदों पिंड विच गए ने ते मेरे साहब ने सारे सिखां नूं आख्या तुसीं पिंड विच जाके सत संगत करो नाम जपो असीं आ रहे हां। तुर पिया अंदर दियां जानण वाला मेरा मालक जिस पापी को मिले न ढोई शरण आवे ता जिस नीच को कोई ना जाने नाम जप तो चौं कुंट माने ओ नमाणियां दा माण नताणियां दा ताण न्योटियां दी ओट। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह घोड़े दियां वागां मोड़ियां ते मेरे गरीब नवाज उथे आ गए जिथे कुटिया विच कोड़ा पिया। मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दीन दुनिया दे मालक दे घोड़े दे सुम्मां दी सोच सुनी ते घोड़े ने नेत्र खोले। मेरे सतगुरु ने आख्या प्यारिया बाहर आ जिन्हू याद करदा सी असीं आ गए आ। मेरे गरीब नवाज पातशाह मैं कितना तुरां कोड़ नाल मरिया है। मेरे मालक कहिंदे रिड़ के आ जा बाहर। घोड़े दी लगाम हथ विच फड़ी आ साढ़े सत फुट उच्चा कद आ अखां खीवियां ने अमृत नाल भरिया रसना दे उत्ते मिठे बोल ने प्यारिया बाहर आ कुछ नहीं हुंदा तू कोशिश कर। बाहर आया महाराज मैं कोड़ा वा तुहाडे गल नूं कितना लगा। गरीब नवाज पातशाह ने आख्या छपड़ी है ना जिहड़ी छपड़ी हुण सरोवर बनिया जे उत्ते आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। हुण उत्थे छपड़ी दा सरोवर बनिया छपड़ी दे विच वड़ जा इशनान कर छपड़ी दे विच बाहर निकलेगा कोड़ हटिया होगा। इतिहास दे पन्ने बोलदे ने जदों वड़िया उदों कोड़ा सी जदों बाहर होया उदों राजी होया आण के सतगुरु दे चरणां नूं चंबड़ गया। महाराज बड़ी तुसां कृपा कीती मैनूं राजी कीता है। मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने उत्थे जो बोर्ड दे उत्ते इतिहास लिखिया ओ लिखिया है कि इस छपड़ी दे विच उहने नहाता ते मेरे सतगुरु ने वचन छड्डिया गुरसिखा तेरा ते एक तरह दा शरीर दा कोट दूर होया है 18 तरह दा कोट दस्या वेदां दे विच जिहड़ा इस सरोवर विच आण के इशनान करिया करूगा 18 तरह दे कोट उहदे दूर हो जाया करनगे। उस थां ते जिथे कोड़े नूं राजी कीता है उथों हथ जुड़ के उह आत्मा गुरु दे चरणा विच इह अरदास करदी सी इक छिन दरस दिखाए जी इक छिन दरस दिखाए जी इक पाहुं तरला तुसीं वी एक भोरी दर्शन दी जय एक भोरी दर्शन दी जय एक भोरी जिन्हां नूं लग गई ना उहदे दर्शनां दी प्यास प्यारे उहनां गली च तुरियां जांदिआं नूं आवाजां अमारियां। नाम जपण वाला किसे नूं वेख्या नाम अभ्यासी किसे नूं वेख्या ते गली चों दी तुरियां जांदिआं नूं आख्या सुण यार हमारे सज्जण बोलो सुण यार नाम जपण वाले नूं आख्या सुण यार हमारे सज्जण उहने आख्या दस जदों आख्या सुण यार हमारे सज्जण ते इन्हें आख्या एक करूं बेनंतिया एक करूं बेनंतिया। मेरे सजना मेरे प्रीतमा मेरे गुरु दे प्यारिया एक बेनती कर दिया एक जोदड़ी कर दिया आख्या दस की बेनती कर दिए ते सम्मोहन लाल प्यारे आखो ते सम्मोहन कई जन्मा तो आपां भी लभदे फिरदे आ उस टिकाणे नूं ते सम्मोहन लाल प्यारे ते सम्मोहन हां फिरो खोजंतिया हां फिरो खोजंतिया। सजना मैं कईयां जन्मा दे विचों एक चीज नूं लभदी फिरदी आ खोजदी फिरदी आ कई जन्मा तो ढूंढदी फिरदी आ किन्नू एक भोरी दर्शन दी जय एक भोरी।

वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा ऐनी प्यास लग गई हो, ऐनी अंदर तड़फ पैदा हो गई हो, ऐनी वो तो बिना उदास हो गई है, सिर देने नु तैयार है। आंधी हां सजना नैन हमारे पेरे आ रंग रंगारे, मेरिया अखा ओ रंग विच रतियां गई ने, 24 घंटे होर किसे नु नहीं देख दिया, 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी पावां तरला तुसी भी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़े आने मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चोर रखिया है मैं क्या वो कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या वो दे सामने उदी फोटो दे चोर करदा सा कहिंदा जी उदी सामने उदी फोटो दे चोर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी कि एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चोर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख्त दा मालक ते धरती ते इको या गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी ते चोर हो सकता है होर किसी ते चोर नहीं हो सकता 1978 दे विच जिहड़े 13 सिखां गुरमुख प्यारियां ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चोर करवाउंदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चोर हो सकता है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकता है ते गुरमुख प्यारे हो इहदी फोटो दे उत्ते उन्हें चोर रखे ते चोर करदा है ते मालक दे गुटके उन्हें मंजी दे थले रखे जांदिया दास ने पहलो मारी फोटो भुआ के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान ओनू थां दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन अंदर

0: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु
1: नानक धन गुरु नानक गुरु नानक धन गुरु नानक
0: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
1: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक
0: सिद्ध कहिंदे ने असी सारी मंडली ने तुहानू धन कहा, हरिद्वार दे पांड्या ने तुहानू धन कहा, जगन्नाथपुरी आलिया तुहानू धन कहा, मुल्तान दे पीर तेरे चरणा ते डिग पे, मक्के मदीने वाले गढ़ बगदाद वाले तेरे चरणा ते डिग पे, आखिर राज की ध्यान दियो जरा, आखिर राज की शक्ति की। ते धन गुरु नानक पातशाह कह रहे ने सिद्धो खोजत खोजत अमृत पिया, बोलो खोजत खोजत लभदिया लभदिया वह चीज लभ गई जिदे नाल फिर सारे मसले हल हो जांदे ने। खोजत खोजत अमृत पिया, अमृत पीता मैं जिदे करके जय जयकारा हो गई, जिदे करके जय जयकार हो गई, हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई, मन तन विच परमेश्वर वस गया। तो फिर सिद्धा ने अगला सवाल किया, ये जिहड़ा अमृत आ बड़ा कीमती आ? साहिब गुरु नानक पातशाह कहिंदे हां बहुत कीमती आ। आखिया फिर दिता की कीमत की दिती दे? ते बड़े प्यारे बचन गुरु नानक साहब ने जो उथे बोले, बड़े प्यार दे बचन ने, कहिंदे खिमा गई मन सतगुर दिया। अमृत नहीं उतरा मिलता जिना चिर मन नहीं अपने गुरु दे अगे अर्पण करना पैंदा, जिना चिर मन नहीं जीव आत्मा वेच देंदा। आ लोकी बहुते कहिंदे मेरा मन नहीं करदा, मेरा मन नहीं मन्निया, मेरे मन की अजे परिपक्ता नहीं हुई,

बारक बारक मुख मांगे सो देना, बारक मुख मांगे सो। ए बन गया मेरा पुत, ते आज तो हुण जो मेरा पुत मुंह चो मंगे इनू देना है। ओ आर्डर करके मुड़िया, उन्हें कह दिता, गया कोल गल नाल फिर मत्था चुमया, गल नाल लाया ते आख्या, मैं कह दिता है दाता देने वाले नू, सचेत होके बैठो, मैं कह दिता है। आके गया ना कि बारक मुख मांगे सो देना, उन्हें आख्या पिता कृपाल आ गया है, कीनी बारक मुख मांगे सो देना। उन्हें ते एक गल कह के मुड़िया, ते पिछे बालक ने आख्या मेरी ते हुण भोखी कोई नहीं रह गई, मैं मंगा की। नानक बारक दर्श प्रभ चाहे, हुण मुक गए ट्रैक्टर मंगने, मुकियां गड्डियां मंगनियां, मुक गईयां दुनिया दियां दौलतां, हुण ते नानक बारक दर्श प्रभ चाहे। बोलो नानक बारक, हुण ते इहनू पता लग गया असली दात की आ, देख जीवां गुर तेरा दर्शन।

एक बार भैनों बचियो तुसी भी पढ़ो, जदों कदे परवटे कटाउण कोई लगे, जदों कदे कोई कर्म कर लगे बची बच्चा, उदों सानू पता लग जाए अंतर जामी जान मेरा प्रभ

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद, जप आदि सच जोगाद सच नानक खुशी पी सच।

दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराहे तेहा हौ करी वखियान। बेशुमार अथाह अगंत अतुल, ज्यों बुलावहु

सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जोगादि सच खैती सच नानक खुशी भी सच

खड़ा ना आप मुहाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाप पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों आप सरवण कर रहे से तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पावन बाणी दे खजाने विचों भगत फरीद साहब जी दे सलोक भगत फरीद साहब जी दे सलोकां दी रोज सवेर दे वक्त लड़ीवार कथा मैं आप संगतां दे सन्मुख पेट करन दा निमाणा यतन आरंभ कर रहा। कुछ बेनतियां भगत फरीद साहब जी दे जीवन संबंधी मैं आप संगतां दे सन्मुख रखदा चलां। लम्मा समा गजनी ते काबुल इन्हां दोवां दा आपसी झगड़ा चलदा रहा, कले कलेश वाद विवाद वैर विरोध लंबा समा चलदा रहा और एक घटना तकरीबन सन 1124-25 दे करीब दी है। बहुत जद रौला वध्या ते काबल दे रहन वाले वजी उद दीन काजी एक काबल विचों उठ के ते मुल्तान शहर दे अंदर अपने परिवार नू नाल लेके रहन वास्ते आ जांदे ने। ए जिहड़े काजी जिन्हां दा नाम वजी उद्दीन साहब है इन्हां दे कोल एक बेटी सी जिस बेटी दा नां सी मरियम। भगत फरीद साहब जी दे सलोकां दे संबंध विच तुसी बहुत वार पढ़िया सुनिया पर मैं कुछ बेनतियां उन्हां दे जीवन संबंधी तुहाडे सामने रखनियां चाहुंदा। इन्हां दे पास एक बेटी सी जिस दा नाम सी मरियम, बीबी मरियम करके इतिहास दे अंदर नाम प्रसिद्ध होया। ए बीबी मरियम हजरत मुहम्मद साहब जी दे सके चाचा हजरत अब्बास जी दे खानदान विचों सी। बीबी मरियम हजरत अब्बास साहब जी दे खानदान दे नाल संबंधित है। इस बीबी नू इस बच्ची नू काजी साहब ने गोद लेके पालिया पढ़ाया लिखाया ते जद ए मुल्तान आए ते नाल ही चलदी चलदी बीबी मरियम ही आई। बीबी मरियम जद जवान हुई इन्हां दा निकाह कीता गया ते निकाह कीता गया इन्हां दा जलालदीन साहब जी दे नाल। बीबी मरियम दा निकाह उन्हां दा व्याह जलालदीन साहब जी दे नाल कीता गया। इन्हां दे दोवां दे संजोग तों बीबी मरियम ते जलालदीन साहब इन्हां दे संजोग तों इन्हां दे घर दे अंदर पंज पुत्रां ने जन्म लिया है ते तीन पुत्रियां ने जन्म लिया है। तो खैर इस तरह बीबी मरियम इन्हां दे कुख विचों जन्म लैण वाले जिहड़े दूसरे पुत्र ने उन्हां दा नाम रख्या गया फरीद साहब। फरीद दा अखरी अर्थ है अदुती, अखरी अर्थ है लासानी। फरीद उन्हों कहिंदे ने जिहड़ी कोई चीज अदुती जिही होवे, हैरान करन वाली होवे, लासानी होवे उन्हों कह देंदे ने फरीद। जिवें कबीर दा अखरी अर्थ है वड्डा, कबीर दा होर कोई अखरी अर्थ ने। पुराने समय दे अंदर बच्चे दे जन्म हुंदिया सार बच्चे दा नां तजवीज नहीं सी कीता जांदा, नाल लगदा बच्चे दा नाम नहीं सी रखिया जांदा। तकरीबन एक साल डेढ़ साल दो दो साल समा बीत जांदा सी ते तां उस बच्ची बच्चे नूं उहदे थोड़े जे कर्म उहदे

तुमरी शिष्य रखो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो रखो लाज मुरार वाहे गुरु साहिब जी।

एक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निकी गोद आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों मन बिरतियां एकागर करके बहन अते सुनन दी कृपालता करे। आप सरवण करदे आ रहे हो रोज सवेर दे वकत भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों लड़ीवार विचार लड़ीवार कथा। अज जो श्लोक आप संगतां दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, पहला श्लोक है फरीदा जे जाना तिल थोड़े संभल बुक भरे, कि जे मैं जानदा हुंदा कि तिल थोड़े ने ते जल्दी जल्दी बुक भर भर के दूसरे पासे रखन दे नाल सुटन दे नाल इन्होंने जल्दी खत्म हो जाना है, ते मैं बड़ा सोच विचार के संभल संभल के कदम पुटदा बुक भरदा ताकि मेरे भांडे विचों तिल मुकदे ना। हकीकत यह है फरीद जी जिधर इशारा कर रहे ने कि मनुख नूं जदों अपने सवासां दी कीमत समझ विच आउंदी है कि मेरे सवास अमोलक ने, ते जिहड़े सवास इह अज तों पहलां लै चुका है जिन्ने सवास गुजार चुका है उन्हां पिछलियां बीतियां होयां सवासां दे अंदर इह वेखदा है कि मैं कमाया की ते गवाया की, ते नजर इह आउंदा है कि गवाया सब कुछ है ते कमाया कुछ भी नहीं। समझ ये आउंदी है कि सवास गवाई गवाए ने, इन्हां सवासां दे नाल मैं कोई चंगा वणज वपार कीता हुंदा, रब जी दे गुणां दा संग्रह कीता हुंदा, वाहिगुरु मंत्र दा जाप कीता हुंदा, ये कुछ ते नजर आ नहीं रहा, ते सवास सारे गवाए हुए गुम हुए राख दे ढेर दे अंदर पाए हुए नजर पै रहे। पिछले बीते समय दे उत्ते तौबा कर रहे ने, उपदेश ते सानू ही दे रहे ना भगत फरीद साहब, आप ते उस महासागर परमात्मा दे अंदर मिलके अपेद हो ही चुके ने, साडे लई उपदेश है पिछले बीते हुए समय दे अंदर जो गुनाह हुए जो सवास संभाल ना पाया उन्हां वास्ते पश्चाताप कर, उन्हां गुनाहां दे उत्ते तौबा कर, ते अगों वास्ते अपने मार्ग नूं सवारन दा आप यतन कर, अगों वास्ते रहिंदे सवासां दी संभाल करन दा यतन कर। जिस तरह धन तुहाडी जेब दे अंदर है तुहाडा अपना ही कमाया होया धन तुहाडे पास है, हुण मर्जी भी तुहाडी है कि उस धन दे नाल बाजार विचों जा के तुसी अति कौड़ी चीज खरीद के लैओ, ते तुहाडी मर्जी भावे अति मिठा पदार्थ बाजार दे अंदर जाके खरीद के लैओ, एको ही मार्केट दे अंदर जान लेवा पदार्थ मिलदे ने ते जान देवा पदार्थ मिलदे ने। जो तंदुरुस्ती देण वाले ने पदार्थ ओ चीजां वस्तां मिल जांदियां ने बाजार विचों, ते जो रोगी बनाउण वालियां ने चीजां वस्तुआं ओ भी मिल जांदियां ने बाजार विचों। शहद खरीद के लियाउणा है, मिश्री खरीद के लियाउणी है, कोई होर मिठास खरीद के लियाउणी है, तुहाडी मर्जी है, पैसा तुहाडा है, सोच तुहाडी है। अगर कौड़ा तुम्मा खरीद के लियाउणा है ते तां वी सोच तुहाडी है, पैसा वी तुहाडा है, मर्जी तुहाडी है, क्योंकि सवासां दा सरमाया तुहानू खुदावंद करीम परमात्मा ने दे दिता है। इस धन दे नाल खर्च करके तुसी वैस्या द्वारे जा सकदे हो, पब्बां क्लबां दे अंदर धन नूं खर्च करके जा सकदे हो, इसी धन दे नाल जुवारी बन सकदे हो, इसी धन दे नाल अयाशी बदमाशी दे अड्डे कायम कर सकदे हो धन दे नाल, ते इसे ही धन दे नाल आपां
गुरुद्वारे दे अंदर मंदिर मस्जिद दे अंदर धर्म स्थाना दे उते लिया के इसे धन दे नाल लंगर भी चला सकने। इस धन नू जो तुहाडी जेब दे अंदर है तुहाडी मर्जी है उन्हों सही पासे खर्चना है वह खर्चिया जाएगा, गलत पासे खर्चना है वह खर्चिया जाएगा। धन का तो कोई उजर मामला ही नहीं, धन का तो कोई अगों बोल बुलावा ही नहीं कि तू मैनू खर्च करना चाहना है गुरुद्वारे दे अंदर ते मैं गुरुद्वारे विच खर्च होना नहीं, या धन ते कदी ये नहीं कहिंदा कि तू मैनू खर्च करना चाहना है पब दे अंदर ते मैं पब दे अंदर खर्च होना नहीं, तू अपना जोर ला ते मैं अपना जोर लाउना, धन ते इस तरह नहीं कहिंदा। धन कमाया होया आया तुहाडी जेब दे अंदर, हुण अगों तुहाडी सोच दे मुताबक उस धन ने वरतों विच आउणा है, उहनूं गलत पासे वरतो उहनूं सही पासे वरतो, ये तुहाडी समझ है। मैं एक बेनती होर भी चलो करदा चलां, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र बाणी दे अंदर एक अरदास करन दा बल अरदास करन दा तरीका पातशाह ने साडी झोली दे अंदर पाया। कहन लगे सा मत दीजै दयाल प्रभ, हे मेरे मालक दया दे सागर सतगुरु जी, मैं तेरे दर दा जाचक तेरे घर दा मंगता बन के मैं तेरे कोल आया, ते हुण छीदे कोल हाथ फैला के मंगो। अगला पुछदा है ना कि तेरी मंग की, कोई मंगता तुहाडा

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निकी गोदा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनो, आप रोज सवेर दे वकत सत्कार योग भगत फरीद साहब जी दी बाणी विचों, उन्हां दे सलोकां विचों कथा विचार सरवण करदे आ रहे हो। अज तुहाडे सामने तीन सलोक भगत फरीद साहब जी दे पढ़ के सुनाए गए। पहला सलोक, देख फरीदा जो थिया दाड़ी होई पूर। कह लगे कि अपने जीवन दे अंदर ध्यान दे के वेख की होया नजर आ रहा है, जो थिया जो हो चुका है, जो बन चुकी है खेड, वो ए नजर आ रहा है कि दाड़ी होई पूर। तेरे दाड़ी दे वाल रंग अपना बदल के सफेद हो गए ने, काली हूं हुण तौले आए, पवर गए बग बैठे आए, काले रंग जवानी दी निशानी वो चले गए, चिट्टा रंग बुढ़ापे दी निशानी वो आण के तेरे उत्ते बह गए। और नाल ही अगली पंक्ति विच कह रहे ने, अगों हुण नेड़ा आया। अगे नेड़ा केड़ा पासा आ रहा है? अगे मौत ते पिछा रहा दूर पिछे जन्म। मौत नेड़े नेड़े आउंदी नजर आ रही है ते जन्म दा दिन पिछे दूर रह चुका नजर आ रहा है। साढ़े जीवन दी सारी खेड जन्म ते मरण दे विचकार चल रही है। साड़ी शुरुआत जन्म तो हुई, साड़ा अंत मौत ते जाके हुंदा उत्ते हुंदा है। जन्म दे नाल असी कुछ नहीं सी, मौत तो बाद कुछ बन सकन दी समर्था साड़े विच नहीं है। जन्म ते मौत दा ए विचकारला समा, विचकारले समय दे अंदर ही असी अमीर हां, गरीब हां।

आया सेकित फेर चित फरीदा कु केंदिया चा केंदिया मती देंदिया नित जो शैतान वंजाया से कित फेर चित वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाप पवित्र ते निगी गोता आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों आप रोज सवेर दे समय लड़ीवार कथा सरवण करदे आ रहे हो। सत्कार योग भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों अज जो आप संगत दे सन्मुख सलोक पढ़ के सुनाए गए उन्हां विचों पहला सलोक भगत फरीद साहब जी दी रसना द्वारा उचरिया होया। फरीदा काली जिनी ना रावया तौली रावे कोई। काला ते तौला, तौले दा मतलब चिट्टा, इन्ना दो रंगा दा जिक्र भगत फरीद साहब जी पहली पंक्ति दे अंदर ही कर रहे ने। वालां दा रंग काला होना यह जवानी दी निशानी है ते वालां दा रंग तौला हो जाना चिट्टा हो जाना यह बुढ़ापे दी निशानी है। बुनियादां भरिया ही ना होन, बुनियादां बुनाईया ही ना होन, बगैर बुनियादा दे अगर इमारत नूं खड़ा करना चाहिए तो इमारत खड़ी नहीं होएगी। अगर किसी ने जमीन दे अंदर किसी सब्जी दा फल दा फसल दा बीज बीजिया ही नहीं ते बगैर बीज बीजन तो वह फल की तमन्ना करे तो उहदी तमन्ना करनी ही गलत है। बगैर दवारां तों कोई छत खड़ी करनी चाहे ते दवारां तों बगैर छत खड़ी नहीं हुंदी। बगैर बीज बीजन तों कोई फल दी लालसा रखे तमन्ना रखे उहदी चोली दे अंदर फल नहीं पैंदा। बगैर शुभ कर्म करन दे अगर कोई ये चाहे कि मेरे मन नूं शांति मिल जाए सुकून मिल जाए सहज बन जाए घर दे अंदर सुख बन जाए वो भी नहीं बनता। सुख नूं प्राप्त करना एक वड्डी ते महान दात है। शांति हृदय दे अंदर बन जाना एक उपलब्धि एक मंजिल दी प्राप्ति है। पर खिमा चाहवांगा ये वेखो कि उस सुख दी प्राप्ति शांति दी प्राप्ति वास्ते मैं कर्म की कीता है। अगर कर्म ही नहीं है ते मंजिल ते बहुत वड्डी दी मंग कर रहे हैं वो मंजिल मिले किवें। शांति बड़ी वड्डी दी मंग कर रहे हैं वो शांति बने किवें। अगर बुनियादा ही नहीं है बीज ही नहीं है ते फिर शांति जीवन दे अंदर बने किवें। भगत जी कहन लगे काली, काली दा मतलब काले रंग दे अंदर ते काले रंग दा मतलब जवानी दे पैर दे अंदर क्योंकि जवानी दी निशानी है वालां दा रंग काला स्याह काला। कहन लगे जिस मनुख ने जवानी नूं बर्बाद कीता है उदा जीवन सारे दा सारा तकरीबन बर्बाद हो ही जांदा है क्योंकि जे आप ध्यान देके वेखोगे ते जवानी दे अंदर तकरीबन तकरीबन गुनाह हुंदे नजर पै रहे ने ते जवानी दे अंदर ही दूसरे पासे गुण हुंदे नजर पै रहे ने। ठीक है दुनिया दे अंदर कुछ बच्चे भी गुनाहगारी हुंदे ने कुछ बुजुर्ग भी गुनाहगारी हुंदे ने कुछ बच्चे भी बड़े महान हुंदे ने कुछ बुजुर्ग भी बड़े महान हुंदे ने पर सारी एवरेज कड्डो अगर आंकड़े कड के सामने लियाओ ते जवानी ही ज्यादा गुनाहां वाले ते जवानी ही ज्यादी गुणा वाले। कतलो गारत दे अड्डे बने
ਅਯਾਸ਼ੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣੇ, ਵੈਸਿਆ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣੇ, ਜੂਏ ਦੇ ਅੱਡੇ ਕਾਇਮ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਰਧ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਿੱਟ

अगर कोई गुनाह कर रहा है जवानी दे अंदर मूल रूप विच इस तरह ही कह लो, मेरा मतलब यह नहीं है कि बचपन विच गुनाह नहीं होंदा या बुढ़ापे विच गुनाह नहीं होंदा, मैं एवरेज की गल कर रहा परसेंटेज अंकड़े वेखो जवानी गुनाहां दे नाल भरी नजर आ रही है। अंकड़े वेखो जवानी दे दौर विचों ही मनुख गुजरदिआं अगर इस जवानी दे वेग नूं रुख दे दे जवानी दे वेग नूं बदल दे ते जवानी इहदी सीधे मार्ग दे उत्ते लैके नूं तुर पैंदी है। तो हुण मैं इस तरह कहां कि जवानी जिहदा जिक्र भगत फरीद साहब जी कर रहे ने, काली जिनी ना रावियो, कहण लगे वालां दा रंग काला सी जवानी दी बहार सी उस वक्त ते तू अपने जीवन नूं सलामत रखण वास्ते बुनियाद बनाई ने, मन दे अंदर शांति बने, सहज बने, सुकून बने, ए इंतजाम तू कीता ही नहीं है। ते जद बुनियादा ही नहीं ते हुण ओ फल वी किवें मिले जिहदी मंग कर रहे हैं, ओ फल वी किवें मिले मैं सांझे तौर ते अर्ज कर रहा हां। काली जिनी ना रावियो, जवानी दे अंदर मनुख दा तकरीबन तकरीबन सुभाव बदल जांदा है। बालपन दा जिहड़ा सुभाव है ओ भोला सुभाव है और हर बच्चे दा सुभाव भोला हुंदा है, इक दा नहीं, हर बच्चे दा सुभाव अति कोमल हुंदा है, भोला हुंदा है ते वासना तो रहित हुंदा है। किसे बच्चे दे कोल कोई काम क्रोध दी वासना नहीं हुंदी, किसे बच्चे दे कोल निंदा ते चुगली नहीं हुंदी। बालपन वाला सुभा जवानी दे अंदर तकरीबन आण के बदल जांदा है। आप जितने सूझवान प्रेमी शोभा पा रहे हो मेरी बेनती नूं समझण दा यतन करियो, जवानी वाला सुभाव बुढ़ापे दे अंदर जाके बदलदिआं बड़ी देर लगदी है। बालपन वाला सुभाव कुदरत दे बनाए अटल नियम दे मुताबक, परमात्मा दी नेत दे मुताबक जवानी दे अंदर आण के बदल जांदा है। किसे बच्चे दे पास ओ सुभा नहीं रहिंदा जो बहुत छोटी आरजा बालपन दे अंदर सी, जवानी दे अंदर ओ सुभा नहीं रहिंदा। जवानी दे अंदर किसे दा मन वासना वल ज्यादा प्रेरिया जांदा है, किसे दा नहीं प्रेरिया जांदा। बालपन दे अंदर कोई भी गुनाह नहीं, ना हंकार, ना निंदा, ना चुगली, ना ईर्षा, ना बखीली, पर जवानी आई कोई निंदक बन जांदा है, कोई चुगलखोर बन जांदा है, कोई बड़ा हंकारी बन जांदा है, अखां दे राहीं वेखदा है ते तां वी पत्थर वर्गियां कठोर अखां दे राहीं, बड़ा हंकार। कोई सोचदा है, बोलदा है, चलदा है ते काम दे राह दे उत्ते चलदा है, दूसरा रस्ता उहनूं कोई नजर आउंदा ही नहीं। पर जवानी दे अंदर कोई विरला विरला इस तरह दा भी हुंदा है। बालपन विच अगर भगती दे मार्ग ते नहीं सी चलिया ते जवानी दे अंदर उहदा परमात्मा दे मार्ग दे नाल वी प्रेम बन जांदा है, कोई विरला विरला, किसे विरले गुरमुख प्रेमी दा सुभा इस तरह बदलदा है। बालपन वाला सुभा जवानी विच आण के बदल जांदा है ते फिर जवानी दे अंदर ओ सुभा पकदा है ते जिहड़ा सुभा बंदे दा पक जाए ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਰਾ ਕੁ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰੁਕਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਪਰ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਛੂ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਮ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਲਾ ਵਿਚਾਰ, ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਧਲਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੇ ਪਕੜ ਕਰ ਲਈ ਏ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦਿਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ

फरीदा थियो पवाही तब जे साई लोड़ें सब एक छिज है बिया लताड़िया है ता साई दे दरवाड़िया है।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग, मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र कोत आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनो, आप लड़ी वार कथा सरवण करदे आ रहे हो भगत फरीद साहब जी दी पवित्र बाणी विचों। भगत फरीद साहब जी दे जो श्लोक अज आप संगतां दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए, उन्हां श्लोकां विचों पहला श्लोक फरीदा कु केंद्यां चा गेंद्यां मत्ती देंद्यां नेता, जो शैतान वंजाया से कित फेर चेता। भगत जी कहन लगे जिस दे चित दे अंदर दिन पर रात लगातार शैतान ही वसदा है, बुराई वसदी है, उन्हूं मत्ता देन वाले लख मिलन पर वह किसी की मत लेंदा कदों है। उन्हूं कूक कूक के पुकार पुकार के कोई लख वारी एक गल कह कि इस रस्ते दे उते ना चल, ये बुरा रस्ता है, इस रस्ते दे उते चलदा चलदा ठगिया जाएगा, पर वह किसी की आवाज नूं सुनदा ही नहीं है, वह किसी की गल नूं मनदा ही नहीं है, तरजीह देंदा ही नहीं है। शैतानियत का इतना वड्डा जोर मन दे अंदर, शैतानियत की इतनी वड्डी लहर मन दे अंदर चलदी कि वह ना मां ना पिता ना किसी उपदेशक ते ना गुरु दे बोल नूं सुन के मनन वास्ते तैयार है। कूक ते रहे ने ना गुरु तेग बहादुर पातशाह, पुकार पुकार के कह रहे ने कि जाग रे मन जागण हारे, गुरबाणी कह रही है ना जाग रे मन जागण हारे, पर जागण दा नां लेंदा कदों है। कूक कूक के कह रहे ने सतगुरु के जाग ले हो रे मना, जाग ले हो कहां गाफल सोया, जो तन उपजे संग ही सो पी संग ना होवा। पर की असी इस गल नूं सतगुरु दी आवाज नूं सुन के मन लिया है, साडा मन इस पासे नूं मुड़ तुरिया है। सतगुरु पुकार पुकार के कह रहे ने सुख नाही बहुता तन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहुत देश कमाए, सर्ब सुखा हर हर गुण गाए। पुकार पुकार के कह रहे ने के सर्ब सुखा हर हर गुण गाए, तो की साडे मन ने सतगुरु दी इस आवाज नूं सुन लिया। पुकार पुकार के हजूर कह रहे ने नर अचेत पाप ते डर रे, ते गुरु कह रहे ने नर अचेत ए बेहोशी दे अंदर चलन वाले मनुख पाप ते डर रे, पाप करन लगा संकोच कर, पै खा ना कर, तो की साडे मन ने ए आवाज सुन ली। जद बंदे दे मन दे अंदर शैतानियत चलदी होवे, कोई भी शैतानी दा वेग चलदा होवे, काम क्रोध लोभ मोह निंदा चुगली, ते बंदे नूं ओही कुछ ही प्यारा लगदा है। जद ओनूं असीं प्यार कर लैने आ ते फिर ओनूं छड्डण दा ते सवाल नहीं पैदा हुंदा, क्योंकि असीं प्यार कर लिया है बुराई दे नाल, ते जद बुराई दे नाल प्यार बाणी गया है ते हुण फिर बुराई नूं छड्डांगे क्यों। मन ओनूं कदी वास्ते भी छड्डण वास्ते राजी नहीं हुंदा जिदे नाल ए प्यार दी गंढ पा लवे, ते ओनू कदी अपना बनाउन वास्ते तैयार नहीं हुंदा जिन्नू मन प्यार ना करे, मन परवान ना करे। निरंकार दे संबंध विच मंदरां मस्जिदां गुरुद्वारियां दे अंदर कथा कहानियां चलदियां ने, मन निरंकार दे राह दे उत्ते नहीं तुरदा। क्यों नहीं तुरदा? क्योंकि मन अजे गुरबाणी दे बचना दे नाल निरंकार दे नाल प्यार बनाया ही नहीं है। मन इस राह दे उत्ते तां नहीं तुरदा क्योंकि मन ने अजे तक मन्या नहीं है, मन दी प्यार वाली तंद प्यार वाली गंढ अजे बजी नहीं है।
ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਹੈ। ਮਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੰਨਾਂ ਨੇ, ਮਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪ ਬੁਰਾ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਪ ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਨ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,

मिठियां रब ना पूजन तुद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, आप चल रही लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दे श्लोकां विचों सरवण करदे आ रहे हो। मन बिरतियां एकागर करो, इस श्लोक नूं आधार बना के कुछ समझन ते समझाउण दा यतन करिए। फरीद साहब जी दा फरमान फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली होए जाए। कहन लगे मनुख इस भरम विच ते रहिंदा है के बारों मेरे सिर दे उते बजी हुई पग मैली ना होए। हकीकत है कि मनुख नू जितनी खबर बार दी है उना ही अंदर दी तरफों अनजान है। बार दे बारे समझ आ गई है, अंदर दे बारे समझ नहीं आई। अगर आई है ते बहुत थोड़ी आई है। यही कारण है जिन्ना साफ सफाई का ध्यान बाहर है उन्नी सफाई का ध्यान अंदर नहीं है। तन साफ होना चाहिए सब की तमन्ना है, मन साफ होना चाहिए किसी विरले विरले की लोचा है, सब की तमन्ना यह नहीं है। उस तो बाद तन दे कपड़े घर बार मोटर कार हर जगह जो शरीर दे बैन उठन दे कम आउंदी है वो साफ सुथरी चाहीदी है। इत्ते सब नूं पता है, पर जिथे दीन दयाल निरंकार नूं वसदा रसदा वेखना चाहुंदे आ मन साफ चाहीदा है। इह किसे विरले विरले नूं पता है, सब नूं नहीं पता। तो इस तरह कह लिए कि लोग बार मुखी जीवन गुजार रहे ने, अंतर मुखी जीवन नहीं गुजार रहे। जब भी कोई रब जी दे राह दे उते अपने कदम रख के चलना शुरू करता है उदा ध्यान बारों हट के अपने अंदर वल जाना शुरू होता है। तो जब ध्यान अंतर मुखी होता है समझ आउंदी है अंदर बहुत कूड़ा करकट मैल ही मैल पई है,

चंद्रमुखे, नाम से चंद्रमुखे, ते पति चंद्रमुखे दी शोभा करदा थकदा नहीं सी। चंद्रमुखे दे चेहरे नूं वेख वेख के आनंद पाउंदा सी ते इह गल कहिंदा सी, चंद्रमुखे मैनूं लगदा है तेरे वर्गा सुंदर मनुख दुनिया दे अंदर दूसरा नहीं है। पंडित निहाल सिंह जी लिखदे ने कि एक दिन चंद्रमुखे दे नक विचों मैल निकले, उन्हें हाथ दे नाल नक दी मैल नूं साफ कीता पर थोड़ी जी मैल उहदे चेहरे दे उत्ते उहदी गल दे उत्ते लग गई, थोड़ी जी मैल। उहदे पति ने गलानी कीती, नफरत कीती उस मैल नूं वेख के। ते मैं रज करदा रहिंदा अक्सर ही कि नफरत हुंदी मैल तों है, जे दूजे दी मैल दिस रही है दूजे तों नफरत है, जे अपनी मैल नजर आ जाए ते अपने तों वी नफरत है। दूजे तों नफरत करदे हो जे कोई तुहानूं पुछे भी क्यों, आपां अक्सर कह दिंदे आ इह बड़ा बुरा मनुख है, भी की बुरा है, उहदे हथ पैर बुरे ने, चेहन चक्कर बुरे ने, की बुरा है। आपां कह दिंदे आ नहीं उहदा सुभाअ चंगा नहीं है, सुभाअ बड़ा बुरा है, इहदी सोच बुरी, इहदा वेखणा बुरा, इहदा चलना बुरा, इहदा खाणा बुरा, इहदा मानसिक मंडल बुरा। दूसरे की बुराई तो नफरत है, ते जे ओही बुराई अपने विच दिस पै तो की अपने नाल प्यार करोगे। पर शर्त यह है कि जे दिस जाए, पर दिसदी दूसरे की बुराई है, अपनी बुराई बंदे नूं दिसदी नहीं है। अपने वेखदा है जदों भी गुण वेखदा है, दूसरे की जदों भी वेखदा है बुराई वेखदा है, औगण वेखदा है। तो पति कहन लगा, चंद्रमुखे पहला चेहरे की मैल साफ कर, तेरा चेहरा वेखण दे योग नहीं है। पति देव रोज कहिंदे सी मेरे नालो सुंदर कोई दूजा नहीं, अज की होया। पति कहन लगा, चेहरे नूं जाके साफ कर, तेरे चेहरे दे उत्ते नक विचों निकली हुई मैल जम गई है। तो निहाल सिंह जी लिखदे ने, हे मल मूत कसूत सबै पुन और सलेखन बांजन भारी, नाक की मैल जबे निकसे कर नाहे संभार सो पोच उतारी, कर दे नाल मैल कर मैंने हाथ, कर दे नाल मैल साफ कीती है पर किधरे चेहरे दे उत्ते लगी रह गई है। आखिया, कर नाहे संभार सो पोच उतारी, तो मुख चंद्र कहे जेह को तब नाहे निहार सके वो नारी। ते अखीर दे उत्ते पंडित जी ने अपने वालों संदेश दिता, कहन लगे, पिख रंचक, पिख मैंने वेख के, रंचक मैंने थोड़ी जी, पिख रंचक मैल गिलान करे, सठ सठ मैंने मूर्ख, सठ जानत नाही अहे के सारी। हे मूर्ख मनुख, जानदा नहीं है कि तेरे अंदर इस तरह की मैल ही मैल भरी पई, तेरे नौ द्वारिया विचों मैल ही बाहर आ रही है। जितने नौ द्वारिया दे नाल ध्यान जोड़ के वेखो, अंदर दी मैल बाहर आ रही है पर वो शरीर कमैल है। मन दी मैल निरंकार नूं परवान नहीं ते तन दी मैल सानू परवान नहीं। असीं चाहुंदे आ तन साफ होवे, निरंकार चाहुंदे ने मन साफ होवे। तो अज दे इस महावाक दे अंदर भगत फरीद साहब जी दा प्रमाण, कहन लगे, फरीदा मैं भुलावा पग दा, मैं इस भरम विच रहा कि पग मैली ना होवे, मन मैला होवे कोई डर नहीं, पग मैली ना होवे, मत मैली होए जाए, बड़ा ध्यान रखे तन दे पाए हुए कपड़े मैले ना होन, पगड़ी मैली ना होवे। गैला रूह ना जाने के सिर भी मिट्टी खाए, नहीं जानदा कि जिस मैल तो मिट्टी तो परहेज कर रहा है, एक दिन मिट्टी तेरे उत्ते आ जानी, मिट्टी पई है तोलवी कोई ना हो सी मित, मिट्टी तेरे उत्ते आ जाएगी, सिर नूं भी निकल जाएगी, खा जाएगी। तो मैल तन दी ओ भी बुरी, मैल मन दी ओ भी बुरी, तन भी साफ चाहिदा है पर तन मैला भी होवे कम चल जांदा है, पर मन मैला होवे ते कम नहीं चलदा। तन साफ किवें रखना है, पूरी कायनात नूं समझ आ गई है। मन साफ किवें रखना है, ए समझ केवल विरलियां विरलियां नूं, हजारां विचों विरलियां नूं मिली। कोई विरला धर्म दे मार्ग दे उत्ते चलण वाला मन दा परहेजगार है, तन दे परहेजगार सारे ही आ। रस्ते दे अंदर मिट्टी घटा होवे, चिक्कड़ होवे, पानी होवे, असीं सिद्धा तुर के नहीं निकलदे, रस्ता वला के निकल जाने आ, क्यों, सामने ते चिक्कड़ है। सामने चिक्कड़ होवे, चुगली होवे, निंदा होवे, ईर्षा होवे, तवैच होवे, असीं मन नूं उहदे विचों गुजारदे आ, नहीं परहेज करदे कि इत्थों निकलन करके मन भी मैला होएगा। कबीर साहब ताई ते चेतावनी देंदे ने कि

लावन मेरी भुख जिन्ना खादी चुपड़ी घने सहन गे दुख रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो हरिदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो हरिदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाप पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनो आप चल रही लड़ीवार कथा सरवण करदे आ रहे हो। सत्कार योग भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों तीन श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए। पहला श्लोक फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो मांझा दुध सबे वस्तु मिठिया रब न पूजन तुध। गिनती विच भगत फरीद जी कुछ मिठिया चीजा नू ले रहे ने। नंबर एक दे उते शक्कर, नंबर दो दे उते खंड, नंबर तीन दे उते निवात। ते निवात कहिंदे ने मिसरी नूं। मैं अर्ज कीती सी कि सब तो पहला मिसरी मिश्र देश दे अंदर बननी शुरू होई। इनू तां ही मिसरी कहा जांदा है क्योंकि मिश्र दे अंदर ये सब तो पहला बननी शुरू होई कुजे दी मिसरी। भगत जी कहन लगे शक्कर खंड मिश्री गुड़ माखियो, माखियो दा मतलब शहद, मांझा मझा दा दुध। कहन लगे सारियां वस्तुआं मिठियां ने पर जे रबी रस दे मुकाबले दे उते इना विचो कोई भी उदाहरण बनाईए ते ओ रब जी दी तोहीन होएगी। जे ए कहिए कि रब जी दे नाल जुड़न तो बाद जेड़ा रस मिलदा है मिठास मिलदी है ओ शक्कर वर्गी है तां रबी गुणा दी रब जी दे नाम दी तोहीन है। जे कहिए ओ खंड ते मिश्री वर्गी है ते तां वी खंड ते मिश्री दी मिठास परमात्मा दी मिठास नालों बहुत थले है परमात्मा दी तोहीन होएगी। अगा कहन लगे ना उदी मिठास दे बराबर माखियो ना मजदा दुद्ध कुछ भी उदी उदाहरण नहीं है ओ अपनी उदाहरण केवल आप है। अगर दुनिया दे अंदर आप कोही नूर हीरे दी उदाहरण लियानी चाहो ऐस जगत दुनिया दे अंदर जिथे आपा बस रहे हां ते कोही नूर हीरे दी एग्जाम्पल दुनिया विच दूसरी नहीं है। उदे वर्गा हीरा ही दूजा नहीं ते उदे उदाहरण कौन कोई बने। कोही नूर अपनी उदाहरण आप है। इस तो अगे होर चलो चंदन दा रुख दुनिया दे अंदर केवल एक ही जगह दे उते पैदा हुंदा है हिंदुस्तान दे अंदर कर्नाटका स्टेट विच। ते चंदन अपनी उदाहरण आप है। चंदन वर्गा कोई भी दूसरा वनस्पति दा बूटा नहीं है। किन्नू कहोगे कि एदी समेल एदी सुगंध एदी मिठास एदी तासीर चंदन वर्गी। कोई भी बूटा उस तरह दा असरदायक नहीं जिवें चंदन दा बूटा।

तन सुहागन नाओ सहरे पेय कंत की कंत अगम्य था नानक सो सुहागनी जो पावे बेपरवाह सहरे पेय कंत की कंत अगम्य था नानक सो सुहागनी जो पावे बेपरवाह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र अते निकी गोता आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी श्रोते जनो आप रोज रोज श्रवण करते आ रहे हो लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दी पवित्र बाणी विचों। अज जो श्लोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए पहला श्लोक है अज न सुती कंत स्यो अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो डोहागनी तुम क्यों रहन बिहाए। पहला एक बेनती नु समझन दे यतन करो कि इस दुनिया दे अंदर औरत दा जामा ते भावे मर्द दा जामा है। जदों चर्चा परमात्मा दी चले उदों परमात्मा दे सामने आपां सारे नार दे रूप विच आ ते परमात्मा पति दे रूप विच है। इस जग में है पुरख एक है होर सगली नार सबाई। इत्थे जामे दा फर्क नहीं कि जामा औरत दा है जामा मर्द दा है। उपदेश ही कली औरत नूं है मर्द नूं उपदेश नहीं उपदेश सांझा है। गल परमात्मा दी चल रही है इस करके भगत फरीद साहब परमात्मा नूं कंत कहिंदे ने अपने आप नूं नार कहिंदे ने। वैसे भी तुहाडे ज्ञात लई मैं बेनती करदा चलां गुरबाणी नूं ध्यान दे के पढ़ो। गुरबाणी दे अंदर किधरे परमात्मा नूं मां किधरे पिता किधरे पुत्र किधरे भाई किधरे बंधु कह के बुलाया गया सत्कारिया गया। किधरे किधरे गुरबाणी दे अंदर परमात्मा नूं मालक ते स्वामी कहा गया गोपाल कहा गया। गुरबाणी दे अंदर परमात्मा दे संबंध विच कबीर साहब इस तरह भी कहिंदे ने कहे कबीर गुलाम घर का जी आए भावे मार। परमात्मा मैं तेरे दर दा गोला गुलाम हां और तेरी गिरफ्त विच हां हुण मर्जी तेरी है तू मैनू जिंदा रखे तां भला है तू मैनू मार देवे मेरा तां वी कोई इतराज नहीं। उत्थे अपने आप नूं गोला ते परमात्मा नूं मालक मन रहे ने। सूफी संता ने तकरीबन तकरीबन परमात्मा नूं महबूब जानिया है और अपने आप नूं महबूबा दी जगह दे उत्ते मन्निया है। तकरीबन सूफी संतां दा किरदार इस तरह दा है परमात्मा नूं महबूब मन्नदे ने अपने आप नूं महबूबा मन्नदे ने। तो जद परमात्मा महबूब है तो फिर लफज भी उस तरह दे वरतों विच लियाउणे पैणगे। भगत फरीद साहब जी ने लफज बयान किते अज न सुती कंत स्यों कंत मैंने परमात्मा कंत दा आखरी अर्थ वैसे हुंदा है पति ते साडा पति कौन है परमात्मा। अज मैं पति परमात्मा दा मलाप नहीं जानिया पति परमात्मा दे नेड़े नहीं हो सके। जीव स्त्री परमात्मा दे संबंध विच कह रही है अज मैं परमात्मा दी नेड़ता नूं मन करके नहीं पा सके। ते परमात्मा दे नेड़े तन ते हुंदा नहीं हुंदा ते मन परमात्मा दे मलाप दा आनंद मन नूं मिलना है। मन ही परमात्मा पति दी शेज दे उत्ते जाएगा तन दा जाना ही बड़ा मुश्किल। तन किवें लैके जाओगे तन ने ते मर भी जाना है मुक भी जाना है
तन बिरद भी हो जाता है, तन सड़ भी जाता है, तन पसम भी हो जाता है। जाना मन ने है परमात्मा दे दर दे उते। अच मेरा मन परमात्मा दे नाल नहीं जुड़ पाया। जोड़दा समय रोज रोज सुबह तो शाम तक परमात्मा दे नाल अल्लाह दे नाल अपने मन नूं, अज किसे कारण दे करके मेरा मन परमात्मा दे नाल नहीं जुड़िया। मैं परमात्मा दे नाल सौ नहीं सकिया। सौन दा मतलब है मिलना। अंग मुड़े मुड़ जाए मेरे सारे शरीर दे अंदर बेचैनी है, मन दे अंदर बेचैनी है। ते बेचैनी किथे बनदी है? मन दे अंदर। मिलाप दा रस किथे बनदा है? मन दे अंदर। मिलन वाला कौन है? मन। अज मेरे

जो बन जांदे ना डरा जे शह प्रीत न जाय फरीदा किती जो बन प्रीत बिन सुख गए कुमलाय फरीदा चिंत खटोला वान दुख

एक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाप पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सत्संगी जनों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक गोद दा आनंद पा रहे हो, सरवण कर रहे सी गुरु के कीर्तनिया पासों रब्बी बाणी दा कीर्तन श्री आसा जी दी वार दा। मन बिरतियां एकागर करिए ते जुड़िए चल रही लड़ी वार कथा जो भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों चल रही है। भगत जी दा फरमान नाती तोती संभ ही सुती आए नचेंदा, जीव इस्त्री ना तोके। संभ ही दा मतलब हुंदा है सज संवार के अपना शिंगार करके, ना के कपड़े बदल के स्नान पान करके शिंगार हार करके सब कुछ करके ते निश्चिंत होके सौ गए। पति दे नेड़े नहीं गई, पति नू मिली नहीं है, पति नू याद नहीं फरमाया, पति दे मंदर विच प्रवेश नहीं कीते। हार शिंगार स्नान पान करन तो बाद फ्रीज जी कहन लगे निश्चिंत नचिंद। नचिंद दा मतलब निश्चिंत, चिंता तो रहत, निश्चिंत होके सौ गई। फरीदा रही सो बेड़ी हिंगदी, हिंगदी बदबू बड़ी है ते दूसरे पासे गुलाब दे फुलां दी सुगंध भी बड़ी है, चंदन दी महक भी बड़ी है। जिमें चंदन दी महक अपने विच नवेकली थां रखदी है, हिंगदी दुर्गंध भी इस तरह अपनी जगह दे उते नवेकली थां रखदी है। आखिया तेरे मन दे अंदर हिंग वर्गी बदबू रही, रही कथूरी कंध ते कस्तूरी वर्गी महक तेरे जीवन दे अंदर पैदा ना होए। इस सलोक नू खोलन दा यतन करदा चला। बंदा धार्मिक शिंगार ते कर लैंदा है पर धार्मिक बनदा नहीं है। तन करके धर्मी बन जाना बड़ा आसान है, मन करके धर्मी बन जाना परम कठिन है। जिन्ना वेशभूषा पहरावे तन करके धर्मी दिसना आसान है, उन्ना ही मन करके धर्म दे अंदर प्रवेश कर जाना ये महान है। बड़ी दुनिया धर्म दे अंदर प्रवेश कर जाती है तन करके, मन करके प्रवेश नहीं करते। किसी दे हाथ दे अंदर गीता फड़ी होवे, गीता दा पाठ करदा होवे, तीन तारियां वाला तिलक ओहदे मत्थे उत्ते होवे, तेरे धागे दा जनेऊ ओहदे गले विच होवे, धोती उहने बद्धी होवे, इस तरह दा अडंबर वेख के आप कह दोगे कि इह हिंदू धर्म दे अंदर खास मनुख है। गीता हाथ विच फड़ी रह जांदी है, जे कोई गीता दा सलूक मन विच नहीं गया ते फिर ओह सही हिंदू अजे नहीं बनिया। ठीक दूसरे पासे पावे कुरान दी तलावत करदा होवे, हाथ विच तस्बी रखदा होवे, मोढे दे उते मुसल्ला रखदा होवे, सूफ गल होवे, पावे उदा लिबास काला होवे, सूफी संत अक्सर लिबास काला पाउंदे सन, मोढे दे उते मुसल्ला, मुसल्ला कहिंदे ने जिहड़े कपड़े नूं विछा के नमाज पढ़ी जानी है, मोढे ते मुसल्ला होवे, सुन्नत होवे, मुच्छां कटियां होण, बारों नजर पेगा मुसलमान है ते पक्का मुसलमान है, कट्टड़ मुसलमान है। पर जे कुरान दी एक भी आयत ओदे मन विच नहीं वसी ते उस कुरान दी आयत दे मुताबिक वह अपने जीवन नू गुजार नहीं रहा ते कदा मुसलमान है। भावे सिर दे उते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नू रखिया होवे, हाथ विच गुटका होवे और वेशभूषा चोला लम्मा होवे, गिट्टिया तक चार माला सुटिया होण, दाड़ा प्रकाश होवे, पग दा रंग चंगा होवे, पोच के बीबी पग बद्धी होवे, वेखण नूं ते नजर आएगा बे सिख है ते सिख भी खास है, सिख है ते सिख भी कट्टड़ है,
पर जे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दा एक भी बचन उन्हें मन विच वसाया नहीं ते उन्हां बचना दे अनुसार वो जीवन दे अंदर चल नहीं रहा ते फिर कादा सिख है, फिर ते बगले वाला लिबास है, फिर कादा सिख है। तो मैं अक्सर एक बेनती करया करदा कि गीता दी जगदी हुई रोशनी मंदिर दी चार दवारी दे अंदर कैद होके रह गई है। हिंदुआं दे जीवन दे अंदर गीता दे श्लोक नहीं आए, जे आए ने ते बड़े थोड़े हिंदुआं दी जीवनी दे अंदर। कुरान दे पवित्र ग्रंथ दियां आयतां, कुरान दी जगदी हुई शमा, कुरान दी रोशनी मस्जिद दी चार दवारी दे अंदर बंद है। मुसलमाना दे जीवन विचो कुरान नजर नहीं आउंदे, अगर आउंदी है ते ओ मुसलमान उंगलियां दे उत्ते गिने जा सकदे ने, बड़े थोड़े। खिमा मंग लवां, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा महान ज्ञान प्रकाश ते ए जगदी हुई सच्चाई दी शमा गुरुद्वारे दी चार दवारी दे अंदर बंद है। साडे जीवन विचो बाणी दा कोई बचन नजर नहीं आउंदा, और मेरा बोल शायद तुहाडे मन नूं चोट करदा होवे, हकीकत है। दुकान ते बह के यही चेहरा कोई होर रूप बटा लैंदा है, गुरुद्वारे दे अंदर यही चेहरा होर हुंदा है। धर्म यह नहीं है कि चलो गुरुद्वारे जाना है, बह के दो घड़ियां सुनना है, जां सुनाउना है, मत्था टेकना है, ते हाथ विच दात्री फड़ के रखनी है, जिहड़ा दुकान ते आ गया रगड़ के धर देना है, छिल ला लैनी है, या कारोबार दे अंदर दूसरे दा हक खाना है, वधीकी करनी है, नफरत करनी है, ईर्ष्या करनी है, सारा दिन चुगली, सारा दिन निंदा। अगर ये सब बुराइयां मन दे अंदर मौजूद ने ते फिर सिख तो हां, पर विखावे दे सिखां हकीकत वे सिख नहीं है। सिखी केवल बारले पहरावे दा नां नहीं, और ये बेनती मैं अक्सर करता ही रहना। क्यों करता रहना? क्योंकि साडा ध्यान बार जुड़दा है, पहरावे दे उत्ते जुड़दा है, अंदर नहीं जाता है। गुरबाणी दे नेम, गुरबाणी दे नुक्ते, गुरबाणी दे सिद्धांत अपने मन विच वसाओ, ते कारोबार करदियां वक्त, वेखदे वक्त, बोलदे वक्त, सोचदे वक्त, चलदे वक्त तुहानू गुरबाणी दे ओ बचन चोट करदे रहन कि तू इस मार्ग ते चलना, इस मार्ग दे उत्ते नहीं चलना। अगर ते आप बाणी दे अनुसार चल रहे हो, कह सकने आ सच्चे सिखो, खिमा चाहवांगा नहीं चल रहे ते फिर पेखी सिखो, केवल पेख करके। पहरावे तो नजर आ रहे सिखो, पर अंदरों सिख नहीं हो, उहदे विच मैं भी आप भी शामिल हां, तुसी भी शामिल हो। तो खैर, भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने एक सुहागण ने इशनान पान कर लिया है, हार शिंगार कर लिया है, पर पति दे नाल सुला सफाई नहीं है, पति दे नाल मन मुटाव है, ते फिर वह सुहागण कादी होई। कहना की चाहते ने कि धर्म के मार्ग के उत्ते चलदिया चलदिया बंदा धर्म के अडंबर बारों बारों कर लैंदा है, पर पति परमात्मा दे नाल सुला सफाई नहीं, लैन देन नहीं, बैन उठन नहीं, पति दे विचारां दे नाल सहमति नहीं। ते भगत जी कहन लगे फिर अपने आप सुहागण है, अपने आप दे अंदर सिख है, हकीकत विच नहीं है। हुण मैं एक होर बेनती आप संगत दे सन्मुख करदा चला, एक पासे एक पागल मनुख, दूसरे पासे एक रब दा प्यारा भगत मनुख, इन्हां दोवां दे मन दे अंदर जप चलदा है, दोवां दे मन दे अंदर। जो आम अकल दे तल नूं छड के, अकल दे तल नालों थोड़ा उच्चा उठ के जीवन गुजार रहा है, रब दा सच्चा संत, सच्चा भगत, कबीर साहब, नामदेव साहब ते रविदास साहब वर्गा, उन्हां दे मन विच भी जप चलदा है। दूसरा जो अकल नूं छड के, आम दुनियावी तल नूं छड के थोड़ा नीवा जाके नीवी पद्धर दे उत्ते जीवन गुजार रहा है, जिन्हों आपां कह दिंदे आ पागल, पागल दे अंदर भी एक जप चलदा हुंदा है और लगातार चलदा है। लगातार जप चलदा है जां पागल दे अंदर, लगातार जप चलदा है जां एक सच्चे भगत दे अंदर, विचकारले मनुखां दे मन दे अंदर लगातार नहीं चलदा। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਾਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੀ।
ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੈਲੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਦੀ ਚੰਗੇ ਕਦੀ ਮੰਦੇ, ਕਦੀ ਬੜੇ ਉਤਲੀ ਬੁਲੰਦੀ ਵਾਲੇ, ਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੂੰਗੀ ਖੱਡ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਪ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਪ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਪ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਪ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਾ ਜਪ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਜਪ ਚੱਲਦਾ। ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਮਿਲੀ ਪਾਗਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੂਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਉਹੀ ਜਪ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਨ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਲ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਾਗਲ ਦਾ ਜਪ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜਪ ਉਹਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਦਾ ਜਪ ਉਹਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਦਾ ਜਪ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦਾ ਜਪ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਦਾ ਜਪ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਜਪ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਡੰਬਰ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੇਖੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਭੇਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਸਿਮਰਨ। ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਦੀ ਮਾਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵਿਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਜਪ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਜਪ ਕਰਨਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਸ਼ੰਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਪ ਕਰਨਾ। ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਮਰਨ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਪ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਦਾ ਜਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਪ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਜਪਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਗਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਪ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਪ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਮਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਪ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਰਸ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਇੰਦਰੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰਸ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, 4 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ, 20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਬੀਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 2 ਰੁੱਖੇ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੂਠੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 2 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਰਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਭੁੱਖਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਤੇ ਸੋਨਾ 2 ਕਿਲੋ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
प्राण मेरे चलणगे भोजन रोटी अंदर जान तो बाद। हुण सोने दा मैं की करा, इनू वरतांगा ताई जे मैं जिंदा रवांगा, ते जिंदा मैं रवांगा ताई जे मैनू भोजन मिलेगा। मेरी मंग प्रसाद है, मेरी मंग सोना नहीं है। अगर इस तरह दी अंदर भुख जाग जाए परमात्मा दे संबंध विच, आप जुबान तो कुछ भी बोलो वो सिमरन बन जाएगा। अंदर भुख नहीं, अंदर प्यास नहीं, ते खिमा जावांगा फिर रस भी नहीं बनता। रजे हुए मनुख दे सामने थाल भर के होर परोस के रख दे, ओनू कहो भी बड़ा स्वादला भोजन है, होर खा। वो छत्ती नाटक करता है, छत्ती सवाल करता है, दे विच नमक ज्यादा है, मिर्च घट है, खट्टा है, मिठा है, कौड़ा है, पर भुखा मनुख ते प्रश्न नहीं करता। गुरु ग्रंथ से पातशाह दा एक बचन आंदा है कि भूखे खावत लाज ना आवे। जद भुखा मनुख भोजन नू खा रहा है ते लाज कुलाज नू पिछे रख के खा रहा है। खुदियावंत ना जाने, खुदियावंत कहिंदे ने भुखे नू, खुदियावंत ना जाने लाज कुलाज कुबोल। कोई मैनू वेख के की बोलेगा, मेरे वास्ते की सोचेगा, भुखा मनुख ये नहीं सोचता। और एक होर बेनती करा, भुख लगी होवे और दस्तूर होवे कि तुहानू नौकरा चांकरा दे हथों भोजन नहीं मिलना। कोई होवे राजा महाराजा अमीर शाहूकार होवे, पर किसे आश्रम दा ए नियम होवे भी इथों आप ही मंग के खाना पैना है, ते फिर भुख दा सताया होया एक बादशाह भी भिखारी दी तरह हथां नू बर्तन बना के मंगण वालियां दी कतार वे शामिल हो जांदा। शेरे पंजाब महाराणा महाराजा रणजीत सिंह, उन्हां दे घर वाले महाराणी जिंदा, शेरे पंजाब दी मौत तो बाद नेपाल दे अंदर महाराणी जिंदा नू आप एक आश्रम विचों पतलां दे उत्ते मंग के खाना पिया। ओ महाराणी जिन्हू रोज रोज नौकरानियां दासियां अगे पिछे घूमदियां नजर आउंदियां ने, सेवा करदियां नजर पैंदियां ने, अजाब मंग के खा रही है। क्योंकि भुख है ते मंग बनदी है, भुख ही नहीं है ते फिर मंग भी नहीं है। अगर अंदर भुख है ते मंग बनदी है, अगर अंदर भुख नहीं तो मंग बनेगी किवें? धन दी समझ है, धन दी भुख है, धन दी मंग भी है। गुरु कोलों, पिता कोलों, दूसरे कोलों, तीसरे कोलों अगर धन दी चाहत ही नहीं, धन दी भुख ही नहीं, ते धन दी मंग किवें बनेगी? ते धन नूं प्राप्त करन वास्ते फिर आप यतन पर यतन भी कदों करोगे? यतन में ते ताई आरंभ करोगे ना, जे पहला अंदर भुख बनी है उदी प्राप्ति वास्ते फिर आप राह भी लभने शुरू कर दोगे। इस तरह मिलेगा। औलाद दी भुख है, औलाद दी मंग है, औलाद दी भुख ही नहीं ते औलाद दी मंग भी नहीं। तंदरुस्ती दी भुख है ते तंदरुस्ती दी मंग है, तंदरुस्ती दी भुख ही नहीं ते तंदरुस्ती दी मंग भी नहीं। जिस पदार्थ दी तुहाडे मन दे अंदर भुख नहीं बनी, चाहत नहीं बनी, उहदी मंग भी नहीं बनदी। ते जद मंग नहीं बनी ते उहनूं प्राप्त करन वास्ते फिर आप यतन भी क्यों करोगे? यतन ते तां ही करोगे जे भुख बन गई है, चाहत बन गई। परमात्मा दी भुख नहीं है, परमात्मा दी मंग भी नहीं है। हां परमात्मा कोलों मंग है, परमात्मा दी मंग नहीं है। बड़े ध्यान नाल मेरे इन्हां बोलां नूं समझना। परमात्मा कोलों मंग है ते मंग किसदी है? परमात्मा तो पुत्र दे, क्योंकि पुत्र दी भुख है। परमात्मा कोलों मंग है, परमात्मा तो धन दे, क्योंकि धन दी भुख है। परमात्मा कोलों मंग है, परिवार दे। परमात्मा दी मंग नहीं कि परमात्मा तू ही चाहिदा है। तेरे कोलों दातां चाहीदियां ने, क्योंकि दातां दी अंदर चाहत है, दातां दी भुख है। तू चाहिदा नहीं, क्योंकि तेरी समझ भी नहीं है, तेरी भुख भी नहीं है। तो फिर कित्थे है सिमरन मंदा, कित्थे है? तो अर्ज मैं कर रहा सा कि खुदिया वंतना जाने लाज कुलाज कुबोल। भुखा मनुख मंग के खान तो गुरेज नहीं करता, ये नहीं वेखदा कि लोग की कहेंगे की नहीं कहेंगे, खान दी करता है और उदा कोई प्रश्न नहीं है। रजे मनुख दे बड़े प्रश्न ने, भुखे का कोई प्रश्न नहीं है। कोई बंदा तीन दिन तो प्यासा है, अज दी विज्ञान ये गल कहिंदी है कि तकरीबन 40 दिन बंदा भोजन तो बगैर जिंदा रह सकता है।
और तीन दिन पानी तो बगैर जिंदा रह सकता है। अज दी विज्ञान इस तरह कहती है, कोई बंदा तीन दिन तो प्यासा हो, पानी दी उन्हें एक बूंद मिली ना हो, तीसरे दिन उसके सामने एक गिलास पानी का लेके चले जाओ ते कि वो प्रश्न करेगा कि पानी खूह का है, पानी टूटी का है, पानी नलके का है, पानी तालाब का है, पानी दरिया का है, पानी फिल्टर होया है नहीं होया, पानी नू किसी ने झूठे मिठे हाथे नहीं लाए, उसका कोई प्रश्न नहीं। पानी नू वेखदिया पानी नू पीन दी करदा है, पानी नू वेखदिया अंदर लजान दी करदा है। ते जेडे मनुख नू प्यास नहीं, उनू पानी दी जगह दे उते जूस दियो, पानी दी जगह दे उते कोक दियो, उदे प्रश्न ने नहीं है। मैं नहीं पीना, इहदे अंदर मिठा ज्यादा है, इहदे अंदर कड़वाहट है, फिक्कापन है, क्यों? क्योंकि अंदर दी चाहत नहीं, अंदर दी मंग नहीं है, अंदर प्यास नहीं ते पानी दी मंग नहीं। हुण मैं गल नूं छोटी करां, अंदर दी प्यास नहीं ते पानी दी मंग नहीं, कोई पानी लै वी आवे ते प्रश्न बड़े ने, अंदर दी भुख नहीं ते प्रशादे दी मंग नहीं, कोई लै वी आवे ते प्रश्न बड़े ने। परमात्मा दी भुख ते परमात्मा दी प्यास नहीं ते फिर परमात्मा दी मंग भी नहीं ते परमात्मा दा चिंतन भी नहीं, परमात्मा वास्ते अरदास भी नहीं। फिर ये बड़े प्रश्न करता है, सिमरन किवें करना है, सिमरन किस तरह नहीं करना। अगर भुख प्यास है तो फिर ये करता है, फिर ये पुछदा नहीं है, फिर ये करता है, फिर ये करन दी करता है। कदी किसी ने रोटी खान लग्या ये गल पुछी है भी बुरकी किन्नी बनाउणी है किन्नी नहीं बनाउणी, इस बुरकी दे नाल मैं पहला दही लाउणा है, इहदे नाल पहला दाल लाउणी है, पहला मैं सब्जी लाउणी है, की लाउणा है? कदी किसी ने प्रश्न किया है भी तीन सब्जियां मेरे थाल दे अंदर ने ते मैं बुरकी दे नाल पहला सब्जी केड़ी लावां ते बाद विच केड़ी लावां? कदी किसी ने प्रश्न किया? भोजन खाण तो बाद भुख मिटदी है, परमात्मा नूं याद करन तो बाद भुख मिटदी है। असीं याद नहीं करदे, प्रश्न करदे हां। परमात्मा नूं याद करन दी फिर मैं बेनती करां, विधि कोई नहीं है, कोई विधि नहीं है। बड़े ध्यान नाल समझ लेना, रब नूं याद करन दी कोई विधि नहीं है। तुसी मन ही मन करके अपनी मां बाप नूं याद कर रहे हो, याद करन लई किसी विधि दी लोड़ पई? तुसी मन ही मन करके अपनी पत्नी नूं पति नूं याद कर रहे हो तो की किसी विधि दी लोड़ पैंदी है पत्नी नूं याद करन लगे या पति नूं याद करन लगे? तुसी दूर बैठे अपने बच्चियां नूं याद कर रहे हो

जप आद सच जोगाद सच है पी सच नानक खुशी पी सच तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सुवारिया पूरी कोई करामात आप सिरजन हारे तारिया सिखी अतः संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत ना पारावारिया जिनी तू सेविया पाओ कर से तुद पार उतारिया